शर्मा क्रॉम्प्टन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउन होस हर एक 15 दिन में क्रॉम्प्टन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनि नागरिकता मात्र भई पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: कामना सेवा विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा
1: रेडियो एनआरएन 99.1

0: राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौ। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना मा वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपैयाँ मा साथ मा आईपीटीवी मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो

रतन हूँ, प्रोपाइटर भूपाल आले। हजुर, हामी कहाँ प्लाई, सिसा, फर्माइका, किला, कब्जा, एल्युमिनियम पाइप, पाता, स्वदेशी तथा विदेशी रङ, नेपाटपको पिपिआर, सिपिभिसी, पिभिसी पाइप फिटिङ, डोर फिटिङ, किचन डेकोरेसन तथा हार्डवेयर

0: 94.2 समुदाय को आवाज।
1: दमोली बजार घुम्दा घुम्दै थकाई र भोक पनि लाइसक्यो, के हाच हानी होला खै?
2: जान न त मीनाक्षी चटपट एन पानी पुरी पसलमा।
3: हजुर, हामी कहाँ सफा छिटो र मिठो पानी पुरी

0: होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मेजर इंग्लिश, नेपाली, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, मैथ, ट्रैवल एंड टूरिज्म र मास कम्युनिकेशन लगायत का विषय।
1: संपर्क नंबर 0965 64 495, मोबाइल नंबर 98462 68803, दमौली कॉलेज, व्यास नगर पालिका, वार्ड नंबर 4, जलदेवी टो।

0: Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set top box मात्र रु 1200 प्रति महीना में सर्तहरु लागू होने छन्। छिटो बनेकै Willing।
1: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को आवाज।

0: होम डेलिभरीको व्यवस्था छ।
1: प्रोप्राइटर गम्भीर दास नेपाल, मोबाइल नम्बर 98 44 65 94 36, 98 065 41 437।
0: व्यास 3 प्रशासन चोक दमौली।

0: FM 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्निचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचर किसान हार्डवेयर को पछाडि पट्टि रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलाङ, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ,
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ, फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 0 56 05, 98 19 11 36 27, 65 65 0 25।